ना को होए। जे बड़े आप ते बड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात। खसम विसारें ते कम जात, नानक नामे बासनात। राग गुजरी महला चौथा। हार के जन सतगुर सत पुरखा, बिनो करौ गुरपास। हम कीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दया नाम प्रकाश। मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रकाश। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिलै त्रिपतासै, मिल संगत गुण प्रकाश। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाए, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत, जित हर रस पाया। मिल जन नानक नाम प्रगाश, राग गुजरी महला पंजना। काहे रे मन चित मैं उदम, जाया हर हर जीओ परया। सैल पत्थर मैं जंत उपाए, ताका रिजक आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोय न किस की धारिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पौ करिया। उड़े उड़े आवे सह कोसा, तिस पाछे बचरे शरिया। तन कवन खलावे कवन चुगावे, मन मैं सिमरन करिया। सब निधान दस इट सिधान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल साध बल जाइए, तेरा अंत न पारा वरिया। राग यासा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सत गुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगम्मा अगम अपारा। सब त्यावे सब त्यावे तुद जी, हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दा तारा। हर त्यावो संतो जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाण। जो सेवै जो सेवै तुद जी, चन नानक तन कुरबान। हर त्यावै हर त्यावै तुद जी, से जन जुग मैं सुख वासी। से मुकत पए, जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जमकी फासी।

तुद जीवट अवर ना कोई। तू जोग जोग एको सदा सदा तू एको जी, तू निचल करता सोई। तुद आपे भावे सोई वरते जी, तू आपे करें सोई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नान गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सियार मैंडा साई, जो तो पावे सोई थीसी। जो तू दे सोई हूं पाई रहाऊ। सब तेरी तो सबनी त्याया, जिसनु कृपा करें तिनना मृतन पाया। गुरमुख लाधा मन मुख गवाया, तुझे आप विछोड़िया मिलाया।

की राखो शर्मा। कबियो बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा।

सुखी बसै मोर परिवारा, सेवक सिख सबह करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करे, सब बैरन को वास संगरे। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन शत्रु हमारे मारिये। आप हां दे मुझे उबरे, मरण काल का त्रास निवरे।

दीन बांध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताए हमारा।

नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजाजने आप सवारी सिवकन को शिव गुण सुख दियो शत्रण को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पार कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान काट काट के पट पट की जान। जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब या करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं। जेते बदन श्रीट सब तार आपे अपने बोझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद हर आलम। निरंकार निर्विकार निरलंब आदि नीले अनादि असंब ताका मूड उचारत भेदा जाको पेव न पावत बेदा। ताको कृपा हन्य अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिन्ह तन पेव।

बहोर रच दीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर कैठा। सगरे श्रेठ दिखाए चंपव, आज जुगा स्वरूप से अंपव। आबर अच्छा मेरी तुम करो, सिख बारे सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवा तुतपाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुझ तव शरणी परे, तिन के दुष्ट दुख तुहै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सबटारे। जो काल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नहीं आए हैं। रच्चा होए ताए सब काला, दुष्ट वरिष्ट ट्रै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाय ने हरे हो, ताके ताप तनक मो हरे हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होए, दुष्ट शाह छो सके न कोई।

सिमरत शास्त्र भेद सब है, बहु भेद कहे हम एक न जानियो। श्री असपान कृपा तुमरी कार्यो, मैं ना कहियो सब तोय बखानियो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाह गए की लाजवास गोविंदास तुहार।

साचे साहिबा क्या नाही करती रहे, करता तेरे सब किश है जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे।

काल कंटक मारिया। तोर करम पाया तुद जिनको से नाम हर कह लागे, कह नानक ता सुख हुआ तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनोवट पागियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी, संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जाने।

अपन नाम। तेरा किता जातो नहीं मैनो जोग की तोई, मैं निर्गुण आर्य को गुण नाही आपे तरस पयोई। तरस पया मेहरा मत होई, सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरिया। तरस पया मेहरा मत होई, सतगुर सज्जन।

सहज समाध आनंद सुख पूरे गुरदीना, सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीना। सहज समाध आनंद सुख पूरे गुरदीना, सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीना। रहाओ जय जयकार जगतर में लोचे सब जिया, सो प्रसन्न पै सतगुर प्रभु काश बिघन ना थिया। जा कायंग दयाल प्रभ ताके सब दास, सदा सदा वडियाँ नानक गुर पास। जाका अंग दयाल प्रभ ताके सब दास, सदा सदा वडियाँ नानक गुर पास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कार योग सतसंगी जनों, वडभागे हाँ जिथे आप जिया ने संध्या समय में मुख रखद्या सोधा रहे रास साहिब जी की पावन बाणी के पाठ सरवण किए ने। सरबादे पले की अरदास तो उपरंत सतगुरां ने जो पावन मुख वाक की दात बख्शिश की है पवित्र उपदेश आप संगतां ने सरवण किए ने। भलके गोदरा साहब विखे दो श्री अखंड पाठ साहब आरंभ होणगे जिन्हां दे भोग एतवार सवेरे 9:30 पैणगे, उपरंत हफ्तावारी दीवान सजाए जाणगे। परिवारां वल्लों बेनती आप जी ने दर्शन देने की कृपालता करनी जी। समा है गुरबाणी शब्द कीर्तन का, सेवा निभाउणगे भाई परमजीत सिंह जी लुधियाने वाले। आओ तिना दे जिथे पासों गुरबाणी शब्द कीर्तन सरवण करिए। फुलां चुकां दी खिमां आप संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।

सकल सामग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम्हें जानी नानक दास। एक ओंकार वाहगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार। श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती समर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्चन हर गोबिंद नौ सिमरों श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याये जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करनौ निदावे ताए सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुआसां नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित्यावे चित्यावन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत देग तेग फतेह बिरध की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जोगे अटल धर्म का जयकार खालसा जी बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मादा रखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दिस दा सहाई दा तार जीओ। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दी दार ते सेवा संभालदा दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणिया दे माण। नितानिया दे तान न्योटिया दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु आप जी दे पावन पवित्र चरण कमला पास। अरदास बेनती जोदड़ी प्रार्थना है पातशाह जी आप जी दे हजूर संध्या समय नूं मुख रखद्या दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना अंदर गुरबाणी शब्द कीर्तन गुरमत विचारां ढाडी वारां इतिहास राही सेवा करद्या होईआं बेअंत भुल्लां चुक्कां दी खिमा अगां तों समत बख्शिश करनी समूह संगत दी कीती हुई अरदास बेनती दर ते प्रवान करनी कदम कदम लेखे विच लाउणा आप जी दीआं बख्शीआं दातां दे विचों तिल फुल भेटावां दर ते प्रवान करनियां दरों घरों गुरसिखी जीवन नाम दी दात दे के नवाजना मनोकामनावां शुभ भावनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां काम क्रोध लोभ मोह हंकार तों बचा के सत संतोख दया धर्म धीरज दीआं दातां बाणी बाणे नाल गुरु दर दे नाल प्रेम प्यार बख्शिश करना पातशाह जीओ। ऐस वक्त आप जी दे हजूर दीवाना दी समाप्ति दी अरदास है कृपा करो पावन हुक्म दी दात बख्श के निहाल करो अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करने सरबादे कारज रास करने सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया भैया काल की तबै चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां जो प्रभ को मिल बोच है

सदा सहाय संग प्रभ अमृत गुण चीना, सहज समाद आनंद सुख पूरे गुरदीना। सदा सहाय संग प्रभ अमृत गुण चीना, रहाओ जय जयकार जगतर में लोचै सब जिया। सो प्रसन्न पे सतगुर प्रभु काश बिगड़ ना थिया। जाका अंग दयाल प्रभ ताके सब दास, सदा सदा वडियाइयां नानक गुर पास। जाका अंग दयाल प्रभ ताके सब दास,

नानक सफल जनम जय काट बुठा सच तने संत। तिन खनिया वन्या जिन मेरा हर प्रभ डिठा राम। जान चाख अघाणे हर हर अमृत मीठा राम। हर मने मीठा प्रभु तूठा अम्यों वूठा सुख पए। दुख नाश परम विनाश तन ते जप जगदीश ईशा जय जय। मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तूटा। कहो नानक तिन खनिए बन्या जिन कट मेरा हर प्रभु उठा। श्लोक जो लोड़ी दे राम सेवक से कंडया। नानक जाने सत साई संत न बाहरा। संत मेल जल जले खटा नाराम। संग ज्योति ज्योत मिला नाराम। समाए पूर्ण पुरख करते आप वापे जानिए। तैं शून सहज समाध लागी एक एक वखाणिए। आप गुपता आप मुक्ता आप वखाना। नानक प्रम पै गुण बिनासे।

नानक ब्रह्म पै गुण बिनासे मिल जल जलह खटाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जिन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। सारंग महला पंजवा, आप मोहे राम भरोसो पाए। जो जो शरण परयो करुणा निध, ते ते पवै तराए रहा। सुख सोयो अर सहज समायो, सहसा गुरे गवाए। जो चाहत सोई हर कियो, मन बांछत फल पाए। हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो, श्रवणी कथा सुनाए। चरणी चलो मार्ग ठाकुर कै, रसना हर गुण गाए। देखियो दृष्ट सर्ब मंगल रूप, उल्टी संत कराए। पायो लाल अमोल नाम हर, छोड़ नकत हो जाए। कवन उपमा कौन बड़ाए, क्या गुण कहो रिझाए। होत कृपाल दीन दया प्रभ, जन नानक दास दसाए। सारंग महला पंजवा, होए सुख का स्यों बरन सुनावत। आनंद विनोद पेख प्रभ दर्शन, मन मंगल गुण गावत रहा। विषम पई पेख विषमादि, पूर रहे कृपावत। पियो अमृत नाम अमोलक, ज्यो चाख गूंगा मुस्कावत। जैसे पवन बंद कर राखियो, बूझ ना आवत जावत। जाको हृदय प्रकाश पयो हार, वा की कही ना जाए कहावत। आन उपाव जेते किस कही है, तेते सीखे पावत। अचिंत लाल गरे भीतर प्रगट्यो, अगम जैसे प्रखावत। निर्गुण निरंकार अविनाशी, अतुलो तुल्यो ना जावत। कहो नानक अजार जन जरिया, तसही को बने आवत। सारंग महला पंजवा, बिखये तिन रहने मही गुदारे। गोबिंद ना भजे अहं बुद्ध माता, जन्म जुए ज्यो हारे रहाओ। नाम मोला प्रीत ना तिस स्यों, पर निंदा हितकार। शापर बांध सवार तृण को, द्वारे पावक जारे। कालर पोटी उठावे मुंडे, अमृत मानते डारे। ओढ़े बस्तर का जर में परया, बौर बौर फिर चारे। काटे पेड़ डाल पर ठाडो, खाए खाए मुश्कारे। गिरियो जाए रसातल परियो, चिटी चिटी सिर पारे। निर्वैर संग वैर रचाए, पहुंच ना सके गवारे। कहो नानक संतन का राखा, पार ब्रह्म निरंकार। सारंग महला पंजवा,
अवर सब भूले प्रमत ना जानया, एक सुधाकर जाके हृदय वसया, तिन बेदे तत पछाने आ रहाऊ। परविरत मार्ग जेता किश होइए, तेता लोग पचारा, जो लो हृदय नहीं प्रगाशा, तो लो आंदे अंधारा। जैसे धरती साधे बौ बिध, बिन बीजे नहीं जामे, राम नाम बिन मुक्त न होई है, तुटे नाहीं अभिमाने। नीर बिलोवे आत श्रम पावे, नैनू कैसे रीसे, बिन गुर भेटे मुक्त न काहू, मिलत नहीं जगदीशे। खोजत खोजत एह बिचार्यो, सर्व सुखा हर नामा, कहो नानक तुस भयो परापत, जाके लेख मथा मा सारंग माला पंजमा। आन दिन राम के गुण कहिए, सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध, मन बाँचत फल लहिए रहाओ। आवो संत प्राण सुख दाते, सिमरै प्रभ विनाशी, अनाथा नाथ दीन दुख भंजन, पूर रहे हो कटवासी। गावत सुनत सुनावत शरदा, हर रस पी वड भागे, काल कलेश मिटे सब तन ते, राम नाम लिव जागे। काम क्रोध झूठ तज निंदा, हर सिमरन बंधन टूटे, मोह मगन अहं आंध ममता, गुर कृपा ते छूटे। तू समरथ पार ब्रह्म स्वामी, कर कृपा जन तेरा, पूर रहे हो सर्व मैं ठाकुर, नानक सो प्रभ नेरा, सारंग महला पंजवा। बलिहारी गुरुदेव चरण, जाके संग पार ब्रह्म त्याय, उपदेश हमारे गत करण रहाओ। दुख रोग पै सगल बिनासे, जो आवे हर संत शरण, आप जपे अवरा नाम जपावे, वाढ़ समरथ तारण तरण। जाको मंत्री उतारे सहसा, ऊने को सुपार परन, हर दासन की आज्ञा मानते नाही फुन गर्भ परण। भगतन की टहल कमावत गावत, दो काटे ताके जन्म मरण, जाको पयो कृपाल बिठला, तिन हर हर अजर जरण। हर रसय अगाने सहज समाने, मुख ते नाही जात बरन, गुर प्रसाद नानक संतोखे, नाम प्रभु जप जप उदरण, सारंग माला पंजमा। गायो रे मैं गुण निध मंगल गायो, भले संजोग भले दिन अवसर, जो गोपाल रिझायो रहाओ। संता चरण मोर लो माथा, हमरे मस्तक संत धरे हाथा, साधा मंत्र मोर लो मनुआ, ताते गत होए त्रै गुनिया। भगता दर्श देख नै निरंगा, लो मोह टूटे परम संगा, कहो नानक सुख सहजे आनंदा, खोल पीत मिले परमानंदा। सारंग महला पंजवा, कर दूजा एको ओंकार, सत गुर प्रसाद। कैसे कहां मोह जी बेद नाई, दर्शन प्यास प्रे प्रीत मनोहर, मन ना रहे बहु बिधि मुकाई रहाऊ। चितवन चितवा प्रे प्रीत बैरागी, कद पावो हर दर्शाई, चितन करो ए मन नी धीरे, को है रे संत मिला।
जप तप संजम पुन सब होमो तसे अर्पो सब सुख जाए। एक नमक प्रे दृश्य दिखावे ते संतन कै बल जाए।

बात सुनाई। देख चरित्र पई हों बेसमन, गुर सतगुर पुरख मिलाई। प्रभ रंग दयाल मैं गृह में पाया, जन नानक तपत बुझाई। सारंग महला पंजवा। रे मूढ़े तो क्यों स्मृति अब नाही, नरक घोर में उर्द तप करता। निमख निमख गुण गाही रहाओ, अनेक जन्म भ्रम तो ही आयो। मानस जन्म दुलबाही, गर्भ जोन छोट जोन।

ताहे ताहे दुख पाहिं। मिथ्या संग कूड़ लपटायो उरज परयो कुस माहें। धर्म राय जब पकर सबरे तो काल मुका उठ जाहे। सो मिलया जो प्रभु मिलाया जिस मस्तक लेख लिखाहे। कौ नानक तन जन बलिहारी जो अल्प रहे मन माही। सारंग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई। जाके बिशरत होत मृत का गृह में रहन न पाई। रहाओ जी ही प्राण को दाता जाके संग सुहाई। करो कृपा संतो मैं अपने परम मंगल गुण गाय। चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो तूर बांछाए। जे प्रसाद मिलिए प्रभु नानक बाल बाल ताके हो जाए। सारंग माला पंजवा आयो सर के हम बल जाए। आठ पहरे अपना प्रभ सिमरण बड़ भागी हर पाई। रहाओ भलो कबीर दास दासन को उत्तम सैन जन नाई। ऊच ते ऊच नाम देव समदर्शी रविदास ठाकुर बनया। जियो पिंड तन धन साधन का ए मन संतरे नाई। संत प्रताप परम सब नासे नानक मिले गुसाई। सारंग महला पंजवा मनोरथ पूरे सतगुर आप। सगल पदार्थ सिमरन जाके आठ पहर मेरे मन जाप। रहाओ अमृत नाम स्वामी तेरा जो पीवे तिस ही त्रिपतास। जन्म जन्म के किल बिख नासें आगे दर गए होए खलास। शरण तुम्हारी आयो करते पार ब्रह्म पूर्ण अविनाश। कर कर पात्र चरण ते आवो नानक मन तन दर्श प्यास। सारंग महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सत गुर प्रसाद। मन कहां लुभाइए अन को ईत ऊत प्रभु सदा सहाय। जी संग तेरे काम को रहाओ अमृत नाम प्रेप्रीत मनोहर। एह अघावन पान को अकाल मूर्त है साध संतन की ठहरने की ध्यान को। बाणी मंत्र महापुरखण की मन उतारण मान को। खोज लियो नानक सुख थाना हर नामा विश्राम को। सारंग महला पंजवा मान सदा मंगल गोबिंद गाए। रोग सोग तिन मिटे सगल अघ निमख ये हर नाम ते आए। रहाओ छोड़ से अनप बहु चतुराई साधु शरणे जाए पाए। जो होए कृपाल दीन दुख भंजन जम ते होवे धर्म राय।

पहे पुनीत पवित्र माना, जन्म जन्म के दुख हरे रहाऊं। मार्ग चले तनी सुख पाया, जिनस्यों गोष्ठ से तरे। बूढ़त कोरे अंध को मैं, ते साधु संग पार परे। जिनके भाग बड़े हैं पाए, तिन साधु संग मुख जुरे। तिन की तूर बांछे नित नानक, प्र मेरा कृपा करे। सारंग महला पंजवां। हर जन राम राम राम त्याए, एक पलक सुख साध समागम। कोट बैकुंठे पाए रहाऊ, दुलाब दे जब होत पुनीता। जमकी त्रास निवारे, महापतित के पात की उतरे। हर नाम माए उतारे, जो जो सुने राम जस निर्मल। ताका जन्म मरण दुख नासा, चाको नानक पाजे वट पागी। मंतन होए बिगासा,

मोहन कर आवो करो जो दरिया मान करो अभिमान बोलो भूल चूक तेरी प्रचरिया रहाओ।

एक निमक जे बिसर है स्वामी, जानो कोट दिन सलख बरिया, साध संगत की भीर जो पाई, तो नानक हर संग मिरिया, सारंग महला पंजवा। अब क्या सोचो सोच बिसारी, करना सा सोई कर रहया, दे नाव बलिहारी रहाउ। चौं दिश फूल रही बिखिया बिख, गुरमंत्र मूख गुरडारी, हाथ दे राख्यो करे अपना, ज्यों जल कमला अलपारी। हो नाही किश मैं क्या होसा, सब तुम ही कलतारी, नानक भाग परयो हर पाछे, राग संत सदकारी, सारंग माला पंजवा। आप मोहे सर्ब उपाव, बिरकाते करण कारण सम्राट स्वामी, हर एकस्ते मेरी गाते रहाउ। देखे नाना रूप बोरंगा, आन नाही तुम पांते, दे आधार सर्ब को ठाकुर, जी प्राण सुख दाते। भ्रमतो भ्रमतो हार जो परियो, तो गुरमिल चरण पराते, को नानक मैं सर्व सुख पाया, ए सुख बिहानी राते, सारंग महला पंजवा।

हर जियो के दर्शन कहो कुर्बानी, बचन नाद मेरे श्रवण नौ पूरे, देहा प्रयंक समानी रहाओ। झूठ ते गुर की सुहागन, हर पायो सुगट सुजाने, जेकर मैं बैसन नहीं पावत, सो तान मिलियो बासानी। उन कह बासे आयो भगत बशल, जिन राखी यान संताने, कहो नानक हर संग मन माने, आ सब चूकी कान लुकाने, सारंग माला पंजवा। आप मेरो पंचा ते संग टूटा, दर्शन देख पे मन आनंद, गुर कृपा ते छूटा रहो। बिखम थान बहुत बहुत रिया, अनक राख सूर उठा, बिखम गार कर पहुंचे नाही, संत सानत पे लूटा। बहुत खजाना मेरे पाले परे आए, अमोल लालिया कूटा, जन नानक प्रभु कृपा तारी, तो मन में हर रस कूटा, सारंग माला पंजवा।

काम क्रोध लोभ मद मत्सर ए अर्प सगल दान कीना मंत्र दृढ़ाए हरे औखद गुर दियो तो मिलियो सगल पर बिना। गृह तेरा तू ठाकुर मेरा गुर हों खोई प्रभु दीना कहो नानक मैं सहज कर पाया हर भगत भंडार खजीना सारंग महला पंजवां।

छुट्टा संघार नमक कृपाते कोट ब्रह्मांड उधारें रहाओ। करें अरदास बहुत बेनंती निमुख निमुख सामहारें हो कृपाल दीन दुख भंजन हाथ दे निस्तारें।

आप मोहे तन पायो हर नामा पे अचिंत त्रिशन सब जी है लिखियो लेख मथा मार हाओ। खोजत खोजत पयो बैरागी फिर आयो दे ग्रामा गोर कृपाल सौदा ए जोरियो हथ चरियो लाल अगामा आन बापार बणज जो करिय ते ते दुख सहामा गोविंद भजन के निरपय व्यापारी हर रास नानक राम नामा सारंग माला पंजवा। मेरे मन मिष्ट लगे प्रे बोला

गोर बां पकर प्रभ सेवा लाए, साध दयाल हर टोला राओ। प्रभ तू ठाकुर सरब प्रतपालक, मोह कलतर सहित सब गोला, मान तान सब तू है तू है, एक नाम तेरा मैं ओला। जे तख्त बैसा लै तो दास तुम्हारे, कास बढ़ावे के तक बोला, जन नानक के प्रपुरख बदाते, मेरे ठाकुर गहे अतोला। सारंग महला पंजमा रसना राम कहत गुण सोहं, एक नमकी उपाय समावे, देख चरत मन मोहं राओ। जेस सुने मन होए रहा से आत, हृदय मान दुख जो हं, सुख पायो दुख दूर पर आयो, बने आई प्रभ तो हं। केल बिख गए मन निर्मल होई है, गुरु काटे माया द्रोहं, कौन नानक मैं सो प्र पाया, करण कारण समर्थो हं। सारंग माला पंजमा नैनो देखियो चलत तमाशा, सबहू दूर सबहू ते नेरे, अगम अगम घट वासा रहो। अपूर्णा भूले लिखियो ना चलावे, मता ना करे पचासा, खिनमय सास वार बिना है, भगत वशल गुणतासा।

सारंग माला पंजमां चरण है गोबिंद मार्ग सुहावा, आन मार्ग जेता किस्ताइय ते तो ही दुख हावा रहाओ। नेत्र पुनीत पै दर्श पेखे, हस्त पुनीत टहलावा, हृदय पुनीत हृदय हर बस्यो, मस्त पुनीत संत तुरावा। सर्वण धान नाम हर हर कै, जिस कर्म लिखिया तन पावा, जन नानक को गुर पूरा भेटियो, सुख सहजे नंद बे आवा। सारंग मल्ला पंजमा।

उपग्रह मैतन सिमरयो जिस मस्तक लेख लिखा खूले बंधन मुक्त गुर कीनी सब तू है दिखा अमृत नाम पिया मन तृप्तिया या खाए रसन चखा कौ नानक सुख सहज में पाया गुर लाही सकल तिखा सारंग माला पंजमा गोर मिल वैसे प्रभु ते आया पयो कृपाल दयाल दुख पंजन लगे न ताती बाया रहाओ जेते सास सास हम लेते तेते ही गुण गाया नमक न बिसरे करी न बिसरे सत्संग जत जाया हाँ बाल बाल बाल बाल चरण कमल को बाल बाल गुर दर्शाया कह नानक काहू प्रवाहा जो सुख सागर मैं पाया सारंग माला पंजमा मेरे मन शब्द लगो गुर मीठा खुलियो करम पयो परगाशा काट काट हर हर डीठा रहाओ पार ब्रह्म या जोनी संपो सर्वथान कट बीठा पयो प्राप्त अमृत नामा बाल बाल प्राप चरणीठा संत संगत की रेण मुख लागी कि ये सगल तीर्थ मजनीठा कौ नानक रंग चलूल पे हैं हर रंग न लहे मजीठा सारंग माला पंजमा हर हर नाम दियो गुर साथे निमक बचन प्रभु हियरे बसेओ सगल भूख मिरलाथे रहाओ कृपा निदान गुण नायक ठाकुर सुख समूह सबनाथे एक आस मोहि तेरी स्वामी और द्वितीया आस बिराथे नैन तृप्ता से देख दर्शावा गुर कर तारे मेरे माथे कहो नानक मैं अतुल सुख पाया जन्म मरण पहला थे सारंग माला पंजमा रे मुड़े आन काहे कत जाए संग मनोहर अमृत है रे फूल फूल बिख खाई रहाओ प्रभ सुंदर चतुर अनूप विधाते तिस्यों रोचने राय मोहन स्यों बाबर मन मोहयो झूठ गौरी पाई पयो दयाल कृपाल दुख हरता संतन स्यों बने आई सगल निदान करे मैं पाए को नानक जोत समाई सारंग माला पंजमा ओ अंग प्रीत चीत पहलरिया जो तो बचन दियो मेरे सतगुर तो मैं साज सिंगरिया रहो हम भूले तुम सदाय भूला हम पतित तुम पतित उधरिया हम नीच बिरख तुम मैं लागर लाज संग संग बसरिया

सर्व सिद्ध कार्य सब सवरे अंग रोग सगल ही खया कोट पराध किन में खोपई है गुर मिल हर हर कहया। पंच दास गुर वस गत कीने मन निचल निर्भया या इन जावे न कत ही डोले त्रि नानक राजया सारंग महला पंजवा।

खेल खिलाए लाड लाडावे सदा सदा अनदाए प्रत पाले बार की न्याय जैसे मात पिताई तिस बिन निमक नहीं रह सकी है बिसरना कबू जाए को नानक मिल संत संगते मगन पे लिवलाई सारंग माला पंजमा अपना मीत स्वामी गाइए आस ना अवर काऊ की जय सुख दाता।

एक ओट पकड़ी ठाकुर की गोर मिल मात बुद्ध पाई है गुण दान नानक प्रमिलिया सगल चुकी मोहताई है सारंग महला पंजमा ओट सताणी प्रभ जियो मेरे दृष्टना लियावो यवर काऊ को मान महात प्रभ तेरे राऊ अंगीकार कियो प्रभे अपने काट लिया बेख घेरे अमृत नाम यो खुद मुख दीनो जाय पया गुर पैर कवन उपमा कहो एक मुख निर्गुण के दाते रे काट सलक जो अपना कीनो नानक सुख नेरे सारंग माला पंजमा।

अवर न को सूझ है प्रभ बिना कहो को किस पै जासी ज्यो जानो त्यो राखो ठाकुर सब किस तुम ही पासी हाथ दे राखे प्रभ अपने साध जीवन अविनाशी कौ नानक मन आनंद पया है काटी जम की फांसी सारंग महला पंजवां।

हम बारक दीन पिता प्रभ मेरे ज्यो जाने त्यों पार रहाओ। जब भूखा तब भोजन मांगे अघाए सुख सघारे तबे रोग जब तुम संग बसतो छुटकत हुए रवारे कवन बसेरो दास दासन को था पियो थाप नहारे। निमख न बिसरे तब जीवन पाइये बिनती नानक सारे सारंग महला पंजमा। मन ते पै पौ दूर परायो लाल दयाल गुलार लाडले सह सहज गुन गायो रहाओ। गुरबचनात कमात कृपाते बोरण कतो तायो रहती उपाद समाध सुख आसन भगत वशल गृह पायो। नाद विनोद कोट आनंदा सहज सह समायो करना आप करावण आपे कौ नानक आप या पायो। सारंग महला पंजमा अमृत नाम मन आधारो जिंदी आतस कह कुर्बान गुरपूरे नमस्कारो राव। बुझी तृष्णा सहज सुहेला काम क्रोध बिखजारो आए ना जाए बसे ए ठहर जय आसन रंकारो। एक प्रकट एक गुप्ता एक तुंदुकारो आदमा दे अंत प्रभ सोई को नानक साच बिचारो। सारंग महला पंजमा

मंगल रूप प्राण जीवन तन सिमरत आनंद कना बाट समरथ सदा सद संगे गुण रसना कवन पना। थान पवित्रा मान पवित्रा पवित्र सुनन कह नहारे कहो नानक ते पवन पवित्रा चा मैं संत तुम्हारे सारंग महला पंजमा।

तुम्हें पिता, तुम्हें फुन माता, तुम्हें मीत हित भ्राता, तुम परवार, तुम्हें आधारा, तुम्हें जी प्राण दाता, तुम्हें खजीना, तुम्हें जरीना, तुम्हें ही माणक लाला, तुम्हें पार जात गुरते पाए, तो नानक पै निहाला सारंग महला पंजवां।

किन्हीं राज जोबन तन मिलखा, किन्हीं बाप महतारी। सर्ब थोक नान गुर पाए, पूर्ण आस हमारी। सारंग महला पंजवा। झूठो माया को मदमान, त्रोह मोह दूर कर भपूरे। संग पाल जान रहाओ, मिथ्या राज जो बने हरी उमरे। मीर मलक यर खान, मिथ्या का प्रसुगंध चतुराई। मिथ्या भोजन पान दीन।

अल्लाह अपने नाम अपनी इतनी कछु न सारी यन काजन कता वर्ता उर जीव आण जंजारी रहाओ द्योस चार के दिशे संगी ऊहा नाही जय पारी। तेन स्यो राच माच हित लायो जो काम नहीं गावारी हो नाही नाही किश मेरा ना हमरो बासचारी।

मोहने मोहत रहे ना हो रे, साधक सिद्ध सगल की प्यारी, तुटे ना काहू तोरी रहाओ। खाट शास्त्र उचरत रसनागर, तीर्थ कवन ना थोरी, पूजा चक्र बर्तने मत।

कवन मूल प्राणी का कहिए, कवन रूप दृष्टा नहीं हो, जोत पर गाज भई माटी संग, दुलाब देह बखाने हो। तुम ते सेव, तुम ते जप तापा, तुम ते तात पछाने हो। कार मस्तक तार कटे जेवरी, नानक दास दसाने हो। सारंग माला पंजवा हर हर दियो, सेवको नाम, मानस काको बपुरु पाई, जाको राखा राम राव। आप महाजन आपे पंचाय, आप सेवक काम, आपे सगले दूत बिदारे, ठाकुर अंतर जाम। आपे पात्र राखी सेवकी, आप कियो बंधान, आज जुगात सेवकी रखे, नानक को प्रभु जान। सारंग महला पंजवा तू मेरे मीत सका हर प्राण, मान तन जियो पिंड सब तुमरा, इतन सीतो तुमरे तान रहाओ। तुम ही दिए अनेक प्रकारा, तुम ही दिए मान, सदा सदा तुम ही पत राखो, अंतर जामी जान। जिन संतन जान्या तू ठाकुर, ते आए प्रवान, जन का संग पाइये वडभागी, नानक संतन कै कुरबान। सारंग महला पंजवां।

जन्म जन्म के बिखई तुम तारे, सुमत संग तुम्हारे पाई, अनक जोन भ्रमते प्रभ सरत सा सहर गाय।

सारंग महला पंजमा ठाकुर बिनती करण जन आयो सर्व सुख आनंद सहज रस संत तुहारो नाओ राओ।

नैना सांग संतन की सेवा चरण चारी के सायो। आठ पहर दर्शन संतन का सुख नानक के पायो। नैनो सांग संतन की सेवा चरण चारी के सायो। आठ पहर दर्शन संतन का सुख नानक वे पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कार योग सत्संग जनों वट पा गया। जिथे आप जिया ने लड़ीवार चल रहे से सहज पाठ से अं पावन बाणी का आनंद माणिया। समा है शब्द चौंकी आसा की वार दे कीर्तन दा। सेवन बन के सत्कार योग भाई परमिंदर सिंह जी लुधियाने वाले आओ तिना दे जथे पासों पावन बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहिब अंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे अस राजे की तुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा
1: जी सो चंदा उगवे

नानक जी उपाय कलकना वितरम बहालिया उथे सचे सच ने बड़ा चुनवा कढे जजमालिया थाव न पैन कूड़े यार मुकाले दूसक चालिया देते से जन गे हार गए से ठगन वाले आ लिखनावे तरम बहालिया लिखनावे तरम बहालिया।

सेवक सेवा करे जिसनु हुक्म मनाए सी हुक्म न होवे परवार दगस मैं का मिल पाए सी कस मैं पावे सो करे मैंने सो बल पाए सी।

हर कंठ नानक और हरी रे। धन वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक क्या सोने दो कूड़ वंजन पवन चुलारिया नानक सुनियर ते परवान जो सुनेंदे सच तनी क्या सुने दो कूड़ वंजन

रसय अघाए सहज समाए काट काट रमैया जाते। से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाणे, कहो नानक जिनहार प्रभ डिठा, तिन कै साध कुरबाणे। श्लोक दे अंधारी अंध सुनी नाम विहुणिया, नानक सफल जनम जै कट उठा सच धनी संत। तिन खनिय वन्या जिन मेरा हर प्रभ डीठा राम, जन चाख अघाणे हरे हरे अमृत मीठा राम। हर मने मीठा प्रभु तूठा अमयो वूठा सुख पए, दुख नाश परम विनाश तन ते जप जगदीश ईसा जय जय। मोह रहत विकार थके पंच ते संग तूटा, कहो नानक तिन खनिय वन्या जिन काट में।

चंदन बास पए मन बासन त्याग कटियो अभिमाना ना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है था नाना। तेह बड़ भाग बस्यो मन जाकै कर्म प्रधान मथा नाना। काट सकत शिव सहज परगासियो एक समाना ना।

चंद दूजा घोड़ा लैन चलिया, और दूजा घोड़ा लैन वास्ते लाहौर नूं रवाना हुंदा है। उत्थे एक पहोड़ू मल है, पहोड़ू मल दे कोले जांदा है। वह गुरु का सिख है, दर्जी सिख है, वह वस्त्र कपड़े बनाउंदा है। उहदे कोले जांदा है, सारी नाले स्थिति जारी जानकारी लैंदा है वी मैं दूजा घोड़ा लैके जाना है। जिहड़ा सीगा पहोड़ू मल कहिंदा विधि चंदा तू गुरु का सिख है, मैनू श्रद्धा है गुरु के मुबारक चरणा दे बच्चा, तू घोड़ा लैन वास्ते तां आया, पहला भी तू लैके गया है। उन्होंने अखां च घट्टा पा के एक महीने के लगभग उन्होंने कोले रहिंदा रहा है, ते कोई बंत बनाई है। हुण तां चप्पे चप्पे ते पुलिस कर्मचारी हन, शाहजहां भी आया होया है, उन्हें खोजकार सदे है, पैडुए बुलाए है, एक ज्योतिषी बुलाए है, वह आपो अपना टेवा ला रहे है, जोर अजमायश कर रहे है भी साडे विच लै के भी किहड़ा साडियां अखां दे विच घट्टा पा गया, सानू ही मूर्ख बना गया है। वह कहिंदा भाई मेरे ते किरपा कर दे, पहोड़ू मल दे कोले जाके अपना कहिंदा है विधि चंद, पहोड़ू मल तू मैनू ज्योतिषी बना दे है। पहुंच गया सी पहोड़ू मल कोल, आण के दोवां दे सवाल जवाब है। अपना बहादुर विधि चंद उत्थे पहुंचदा है, ते मेरे साथी बयान इउं करदे है।

सो हर सकाए सेवट भागे वट जानिए जिन हर खाता गुर पाए इहो हर सबण तन सब तै भागे निखाए बिन सतगुर पले ना पै मनुख रहे लाए होए सतगुर आगे नान पै उनांतर क्रोसंडाल उनांत क्रोप लाए हर हर हरस आप है आपे हरस होए आप दया कर देव से गुरु कमत चोए सब तन मन हरिया होया नान कर बसया मन सोए सिराख मन ला चौथा दिन स चढ़े फिरियात फिरन सबाई जाए आप खटे नाना फुदे नित मूसा लाए रकाए गुड़ मिठा माया पसरिया मनुख लाक माखी पते बचाए

किए रहता था। कहते ही कैसे चेतना पाक आप पावे विशा ससा संजहा भलाया पिना इन पाक लैंदा बद दुआए तू मा करे कत जिसनु तू पत्याईंदा सो साण तुझे अनंत अहंकार करे अहंकारिय व्यापे व्यापिया मन की मत तिन प्रया भला ना तिस जात न पत सतगुर पुरख मिलाया एको सज्जन सोए हर जन का राखा एक है क्या मास हमे रोए जे जो हर पावे सोतिया कर दर प्रवीण कर नानक कृता रंग हार सब जग में चरण होए श्री राख महला पन्मा मन फिलासपुर अंकना देष्ट भूल खुशियां छतर ताल पाशाह विसाचे परिया भाई दे सुसा संग पाया लिखा लेख तिन पुर पधाते दुख सहसा मिट गया रहा जेते थान तिरंतरा तेते भाव आया धन पाती वट भूमिया मेरी मेरी कर फरिया हुक्म चाय न संघ हुए वरते फरिया

रति आठ पैर गोविंद जी प्राण तन तन रखे कृपा राखे जिंद नानक सरे दुख तारियन रघ पार बसंद सराख मला पन्मा प्रीत लकी तस सासो भज ना विचार ना विछोड़िया विछड़ सब मेरे समाय दीन दर्द दुख भंजना सेव के सर पाए अचज रूप निरंजनो कर मिला माए पाही रे मीत करो प्रसोए माया मोह प्रीत है त्रैक सुखी नसै कोई राम दाना दाता सीरबंत नव रूप अपार सका सात वड्डा उचा वड अपार जिस पेत करवख हिर मन तन होवे शांत एक मन एक ध्याये मन की लय प्रांत कुण दान अवतन सदा पूर्ण जाखीदार सदा सदा रातिय जन विसर नहीं रात जिनको फूल क्या तिनका सखा पिंद मन तन धन अर्पी सबो सौर बारी एजेंद देख सुने हदूर सद घट घट ब्रह्म रपिंद कृपा नु पालदा प्रभनान सब शान सिराग मला पन्मा मन तन धन जिन प्रभ दी रख्या सहस पाए सर्व कला करता पिया अंतर जोत पार सदा सदा प्रभ सिमरिय अंतर राख उतार मेरे मन हर बिन अब न कोय प्रभ सुनाए सदा रहो दुख न व्यापे कोई रहा रतन पदार्थ मन का सुना रूपा खाक मात पिता सात बंधो सूर कूड़े सभ्य साख जिस जन कीता तस न जानी मन मुख पासन पाक अंतर बाल रप रहिया तिस नु जन हतूर तिसना डाकी रच रहिया अंतर हुमे कूर भक्ति नाम विहुणिया अप वंजै पूर राख रो प्रभ करण हा जी चंत कर दया बिन प्रभ कोई न रखण हाल महा विकट जम पिया नानक नाम विसरो कर।

खाक संतन की देह प्यारे आए प्या हर तेरे द्वारे दर्शन देख दर्शन पेखत मन अघावे नानक मिलन सुभाई जियो माज महला पंजवा दुख ते जा।

दुख पंजन निधानी अमूले निरपह निर्वैर अथाय तोले अकाल मूर्त अजूनी संपो मन सिमर ठंडा थीवा जियो सदा संगी हर रंग गोपाला ऊच नीच करे प्रतपाला नाम रसायन मन तृप्त हैन गुरमुख अमृत पीवा जियो दुख सुख प्यारे दुध त्याई देह एह सुमत गुरु ते पाई नानक हा तू है ठाकर हर रंग पार रंगीवा जियो प्रीवा जियो माज महला पंजमा धन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया सफल दर्शन नेत्र पेख तरिया तन मूर्त से चसे पल घड़िया तन सो संजोगा जियो उदम करत मन निर्मल होवा हर मार्ग चलत भरम सगला खोया नाम धन सतगुरु सुनाया मिट गए सगले रोगा जियो अंतर बाहर तेरी बाणी तुद आप कथित है आप बखाणी गुर क्या सब एको एको एको अवर न कोई होएगा जियो अमृत रस हर गुर ते पिया हर पैनल नाम भोजन थिया नाम नारंग नाम चोज तुमासे नौ नानक की कीने भोगा जियो माज महला पंजवा सगल संतन पै

तू संतन की करह प्रतिपाला, संत खेल है तुम गोपाला, अपने संतुत खरे प्यारे, तू सबना का सबना कह पराना जियो, उन संतन कह मेरा मन कुर्बाने, जिन तू जाता जो तू तो मन पाने, तिसके संग सदा सुख पाया, हर रस नानक तृप्त गाना जियो, माज महला पंजवा, तू जल दे हम मीन तुम्हारे, तेरा नाम बूंद हम चातरक तिखहारे, तुमरी

नामयो खुद मोको साधु दिया किलव काटे निर्मल थिया अनंत ब्यानिक शीशा पीरा सगमन आसे दरदा जियो जिस काम करे मेरा प्यारा सो मुक्ता सागर संसारा सत करे जिन गुरु पिछाता सो काहे को डरदा जियो जब ते साधु संगत पाए गुर पेड़ तो हो गई बुलाए साथ साथ सर गावे नानक सतगुरु ढाक लिया मेरे पड़दा जियो माज महला पंजवा ओत पो सेवक संग राता प्रभ प्रित पाले सेवक सदाता पक पानी पखा पीसो सेवक ठाकर ही का आहर जियो काट सिल्क प्रभ सेवा लाया हुक्म साहब का सेवक मन पाया सोई कमावे जो सह पावे सेव के अंतर बाहर महर जियो तू दाना ठाकर साबित जाने हैं ठाकर के सेवक हर रंग माने जो कुछ ठाकर का सो सेवक ठाकर ही।

सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर टोला सो भरम भुलाही। गुर प्रसाद दे जनी अंतर पाया, सो अंतर बार सो हिला जियो। चिमचो वर्थे अमृत हर धारा, मन पीवे सुन सुख शब्द विचारा। आनंद मुरुद करे दिन राती, सदा सदा हर के लाजियो। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, सार कृपा ते सूखा हरिया। सुमत पाए नाम त्याय, गुरमुख होवे मेला जियो। जल तरंग ज्यों जल है समाया, ते ज्योति संग जोत मिलाया। कहो नानक परम कर टेके वाड़ा,

दे जियो से वडभागी जिन तुम जाने सबके मदे अलिप्त निर्बाणे साध के संग उन पहुजल तरिया सगल दूत उन साधे जियो तिनकी शरण पिया मन मेरा मान तान तज मोह अंधेरा नाम दान दी जे नानक को तिस प्रभ अगम आगा दे जियो माज महला पंजवा तू पेड़ साख तेरी फूली तू सूखम होया अस्थूली तू जान ले तू फेन बुद्ध बदा तुझ बिन अवर न पाली है जियो तू सुन मणिए भी तू है तू गंठी मेर सिर तू है आद मद अंत प्रभ सोई अवर न कोई दिखा लिए जियो तू निर्गुण सरगुण सुखदाता तू निर्बाण रसिया रंगराता अपने कर्तव्य आपे जाने आपे दुध संभालिए जियो तू ठाकरू सेवक फुन आपे तू गुप्त प्रगट प्रभ आपे नानक दास सदा गुण गावे एक भोरी नजर निहालिए जियो माज महला पंजवा सफल सो बाणी जित नाम वखाणी गुर प्रसाद किने बिर ले जानी धन सो वेला जित हर गावद सुनना आए ते परवाना जियो से नेत्र परवान जिनी दर्शन पेखा से कर भले जिनी

दोए कर जोड़ एक बिन होकर ही जय कर कृपा डुबदा पत्थर लीजे नानक को प्रभ भय कृपाला प्रभ मन भाणा जीव प्रभ नानक मन भाणा जीओ माज महला पंजवा अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परमगत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर कर दर्शन पाए जियो सुख पाया दुख पूर पराना संत रसन हर नाम खाना जल थल नीर भरे सर सुबर बिरथ

सत्संग जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूर्ण होवे भेट ते गुरदर साया जियो अगम गुजर किछ कीमत नहीं बयानी साधक सिद्ध त्यावे ज्ञानी खुदी मिटी चूका भुलावा गुरमन मही मह प्रगटाया जियो आनंद मंगल कल्याण निधाना सुख चरण नाम विखाना।

गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खो खोवे, पेड़ संग साध संतन के सदा अपोज जपो दे अल्लाह जियो, परे अपना साथ साथ संभारो, इत मत गुर पर साद मन धारो, तुमरी कृपा ते होए प्रगासा, सर्व जिया प्रतपाला जियो, सत सत सत प्रभ सोई, सदा सदा सद आपे होई, चल तुम्हारे प्रगट प्यारे, देख नानक भय निहाला जियो। माज महला पंजवा, हुक्मी वर्तन लागे मेहा, साजन संत मिल नाम जपेहा, शीतल सान सह सुख पाया, ठंड पे प्रभ आपे जियो, सब कुछ बहुत बहुत ही पाया, कर कृपा प्रभ सगल सरजाया, दाल करे मेरे दारा जीशन सब तरापे जियो, सच्चा साहब सच्ची नाई, गुर प्रसाद सदा त्याई, जन्म मरण पै काटे मोहा बिंस सुख संतापे जियो, साफ साफ नानक सोलाहे, सिमरत नाम काटे सब पाहे, पूर्ण आस करी खिन भीतर।

जो जन्म जन्म के किलबुख जावे, मन चंदे से ही फल पावे है। सिमर साहेब सो सच स्वामी, रिजक सब को दी है जियो। नाम जब सर सुख पाई है, सब भौ बिनसै हर हर त्याई है। जिनसे व्यासो पार ग्रामी, काल सगले थी है जियो। आए प्या तेरी शरण आई, जो पावे जो लेहो मिलाई। कर कृपा गुर भक्ति लावो, सच नान के अमृत पी है जियो। माज महला पंजवा, पहे कृपाल गोविंद गुसाई। मेघ वर्षे सुबनी थाई, दीन दयाल सदा कृपाला। ठाठ पही करतारे जियो, अपने जी जंत प्रित पारे। जो बारक माता सुमारे, दुख पंजन सुख सागर स्वामी। दे सगल आहारे जियो, जल थल पूर रिहा बग मेहरबाना। सद बलिहारे जाइए कुरबाना, रैन दिन सदा त्याई। जे खिन महे सगले उधारे जियो, राख लिए सगले प्रव्यापे। उतर गए सब शोक संतापे, नाम जत मन तन हरियावल। प्रभु नानक नदर निहारे जियो। माज महला पंजवा, जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे। से अतर सोन चबारे, जिथे नाम जपिए मेरे गोविंदा। सोई नगर उजाड़ी जियो, हर रुखी रोटी खाए संभाले। अंतर हर अंतर बाहर नजर निहाले। खाए खाए करे बद फैली, जान विसु की वाड़ी जियो। संता सेती रंग न पलाए, साक्त संग विकर्म कमाए। दो लब देख होई अज्ञानी, जड़ अपनी आप पहाड़ी जियो। तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुर गोपाला। कर कृपा नानक गुण गावे, राखो शर्म असाड़ी जियो। माज महला पंजवा, चरण ठाकर के हृदय समाणे। कल कले सब दूर इपे आने, साथ सुख सहज तुनि उपजी। साधु संग नवासा जियो, लागे बीतन टूटे मिले मूले। हर अंतर बार रिहा पर पूरे, सिमर सिमर सिमर गुण गावा। काटे जमकी फासा जियो, अमृत वरखे अनहद बाणी। मन तने अंतर सांस सुमाणी, तेत भाए रह जन तेरे। सतगुर की दलासा जियो, जिसका साथ इसते फल पाया। कर कृपा प्रभ संग मिलाया, आमन जान रह वड भागी।

जिसके जिसके से तिन ही प्रतिपारे पार ब्रह्म भय रखवारे। सुनी बेनती ठाकुर मेरे पूर्ण होई काली जियो सर्ब जिया को दे।

हरि जियो नाम अवखद जन धन तेरे पाया, जन्म जन्म का रोग गवाया, हर कीर्तन गावो दिन राती, सफल एहा कारी जियो, दृढ़ धार अपना दास सुवारिया, काट काट अंतर ब्रह्म नमस्कार।

आठ पहर गोविंद गुण गाई है, बिसरन कोई जासा साजियो, सोई साजन मीत प्यारा, राम नाम सा संग बिचारा, साधु संग तेरी जे सार्ग सागर कटिए जमकी फासा जियो, चार पदार्थ हर की सेवा, पार जात जप अलख पेवा, काम क्रोध किल्व गुर काट, पूर्ण होई आसा जियो, पूर्ण भाग पै जिस प्राणी, साध संग मिले सरंग पाणी, नानक नाम वस्या जिस अंतर, परवान गृहस्थ उदासा जियो, माज महला पंजवा, सिमत नाम दे सुख पाया, कर कृपा भक्ति प्रगटाया, संसंग मिल हर हर जपया, बिनसे आलस रोगा जियो, जाके गृह निबद हर पाई, तिस मिलया जिस पुरब कमाई, ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेसर, प्रभ सबना गल्ला जोगा जियो, किन में थापे थापन हारा, आप एक अंती आप सारा, लेपने जग जीवन दाते, दर्शन डिठे लहन बजोगा जियो, अंचल है सब शिटर आई, अपना नाव बजपाई, गुर बोध पाया कृपा ते नानक तुर संजोगा जियो, माज महला पंजवा, सोई करना जे आप कराए, जिथे रखे सा भली जाए, सोई सियाना सो पतवंता हुक्म लगे जिस मीठा जियो, सब परोई एक तागे, जिस लाए से लाए सो चरणी लागे, ऊन काल जिस होए प्रगासा, तिन सर्ब निरंजन डीठा जियो, तेरी महिमा तू है जाने, अपने आप तू आप पछाने, हम बलहारी संतर तेरे, जिन काम क्रोध लोभ बीठा जियो, तू निर्वैर सन तेरे निर्मल, जिन देखे सब उतरे कलमल, नानक नाम ते आए जीवे, बिनसिए परम पहो तीठा जियो, माज महला पंजवा, झूठा मंगन जे कोई मांगे, तिसको मरते कली न लागे, पार ब्रह्म जो सद ही सेवे, गुरमिल निचल कहना, प्रेम भक्त के मन लागी, गुण गावे अंदर नित जागी, बाह पकड़ स्वामी मेले, जिसके मस्तक लेना, चरण कमल भक्ता मन उठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे, संजना की तू नित बाछे, नाम सच्चे का गहना, उठ बैठ हर हर ध्याई, जय सिमरत वर निर्मल पाइये, नानको प्रभ हो दयाला, तेरा कीता सहना, राग माज अष्टपदी महला पहला, घर पहला एक ओंकार सर गुर प्रसाद, समझन गाय हुकुम सुभाए, सच्ची दरगह महल बलाए, सच्चे दीन दयाल मेरे साहबा, सच्चे मन पति आवणिया, हो वारी जियो वारी शब्द सुहावणिया, अमृत नाम सदा सुखदाता, गुरमति मन विसावणिया, रहाओ ना को मेरा, हो किस के तकेरा, काचा साचा ठाकुर त्रिपण मेरा, होमे कर कर जाए कनेरी, करे अवगुण पछों तावणिया, हुक पछाणे सो हर गुण वखाणे, गुर के शब्द नाम निशाने, सबना का दर लेखा सचे, छूटस नाम सुहावणिया, मन गपूला ठौर न पाए, जमदर बादा चोटा खाए, बिन आवे को संग न साथी, मुक्ते नाम ते आवणिया, साध कूड़े सच न भावे, दुविधा बाधा आवे जावे, लेखिया लेख न मिटे कोई, गुरम मुक्त करावणिया, पेड़िए पिर जातो नाही, झूठ बरूव छुन्नी रोवे ताही, अगुण मुठी मैल न पावे, अवगुण गुण बख्सावणिया, पेड़िए जिंदाता जाता प्यारा, गुरमुख बूझे तत बेचारा, आवन जाना ठाकर हाए, सच्चे नाम समावणिया, गुरु बूझे कथ कहावे, सच्चे ठाकर सचो पावे, नांग सच कह बने विनंती, सच मिले गुण गावणिया, माज महला तीजा घर पहला, कर्म होवे सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत सब चित लाए, होमे मारसा सुख पाया, माया मोह चुकावणिया, हो वारी जियो वारी, सतगुर कह बलहारणिया, गुरमति बरगास होवा जी, अंदन हर गुण गावणिया, रहाओ तन मन खोजे ता नाउ पाए, तावद राखे ठाक रहाए, गुर की बाणी अंदन गावे, सहजे भक्त करावणिया, इस का अंदर वस्ते असंखा, गुरमुख साच मिले ता वेखा, नौ दरवाजे दसवें मुक्ता, अनहद सुध बजावणिया, सच्चा साहब सच्ची नाई, गुर प्रसादी मन विसाई, अंतिम सदा रहेगा राता, दर सच्चे सो जी पावणिया, पाप उनकी सार न जानी, दूजे लागे भरम बलियाणी, अज्ञानी अंधा मग न जाने, फिर आवण जावणिया, गुर सेवा ते सदा सुख पाया, हमें मेरा ठाकर हाया, गुर साखी मिटिया अंधेहरा,
ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁਲਾਵਣਿਆ, ਹਉਮੈ ਮਰ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਦਾ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨ

गुरमुख होवे सो ही पावे, आपे बख्श मिलावणिया। मेरा ठाकुर सच दृढ़ाए, गुर प्रसाद दे सच तलाए। सचो सच वत्ते सभनी थाए, सचे सच समावणिया। वे प्रवाह सच मेरा प्यारा, किल विखे अगण काटण हारा। प्रेम प्री सदा त्याए, पहे पाए भगत दृढ़ावणिया। तेरी भग सचे जे सचे पावे, आपे दे न पछोतावे। सबना जिया का एको दाता, सबसे मसबदे मार जमावणिया। हर तुद बाजू में कोई नाही, हर तुदे सेवी तुद तै तुद सलाही। आपे मेल लेहो प्रभ साचे, पूरे कर्म तू पावणिया। मैं होर ना कोई तुद जेहा, तेरी नदरी सी जिस देहा। अंधन सार संभाल हर राखे, गुरमुख सहज समावणिया। तुद जेवड़ में होर न कोई, तुद आपे सिरजी आपे गोई। तू आपे ही कर भन सवारे, नानक नाम सुहावणिया। माज महला तीजा, सब कटे आपे भोगन हारा। अलख वरते अगमे पारा, गुर के मेरा हर प्रभ ध्याईए। सहजे सच समावणिया, हो वारी जियो वारी। गुर शब्द मन बसावणिया, शब्द बूझे तम मन सो लूझे। मनसा मार समावणिया रहाओ, पंज दूत मोहे संसारा। मन मुखे अंधे शुद्ध न सारा, गुरु मोहे सो अपना कर राखे। पंच दूत शब्द पछावणिया, ए गुरु सदा सच्चे रंग राते। सहजे प्रभ सेवे अंधन माते, मिल प्रीतम सच्चे गुण गाव है। दर हर दर शोभा पावणिया, एकम एके आप उपाया। दुविधा दूजा त्रिविध माया, चौथी पौड़ी गुरमुख ऊची। सचो सच कमावणिया, सब है सच्चा जे सच्चे पावे। जिनसा जाचा जो सह समावे, गुरमुख करनी सच्चे सेवे। सच्चे जय समावणिया, सच्चे बाजों को अवन दुआ। दूजे लाग लाग जप जग खप खप मुआ। गुरमुख सो एको जाने, एको सेव सुख पावणिया। जी जन सरन तुम्हारी, आपे तर देखे कच्ची पक्की सारी। अंधन आपे कार कराए, आपे मेल मिलावणिया। तुम आपे मेले वेखे हदूर, सब में आप रहा भरपूर। नानक आपे आवर ते गुरमुख सो जी पावणिया। माज महला तीजा, अमृत बाणी गुर की मीठी। गुरमुख फिरले किने चख डीठी। अंतर प्रकाश मारस पीवे, दर सच्चे शब्द बजावणिया। हो वारी जियो वारी, गुरचरणी जित लावणिया। सतगुरु है अमृत सर साचा, मन आवे मैल चुकावणे आ रहाओ। तेरा सचे कने अंत न पाया, गुर प्रसाद कने विरले चित लाया। तुद सलाहे न रजा कबू, सचे नावे की भुख लावणिया। एको वेखा अवर न बिया, गुर प्रसाद दी अमृत पिया। गुर के सब तिखा निवारी, सहजे सुख समा सुख समावणिया। रतन पदार्थ पल्लर त्यागे, मन मुखे अंधा दूजे भाए लागे। जो भी जे सोई फल पाए, सुपने सुख न पावणिया। अपनी कृपा करे सोई जन पावे। गुर का शब्द मन वसाए। अंधन सदा रह पै अंतर, पै मार परम चुकावणिया। परम चुकाया सदा सुख पाया, गुर प्रसाद परमत पाया। अंतर निर्मल निर्मल बाणी, हर गुण सहज सुखाव गावणिया। सिमर सात वेद बखाने, परमे पूला तत न जाने। बिन सतगुर सेवे सुख न पाए, दुखो दुख कमावणिया। आप करे किसे आखे कोई, आखना जाइए जे भूला होई। नानक आपे करे कराए, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, आपे रंगे सह सुभाए। गुर के शब्द हर रंग चढ़ाए, मंदर रत्ता रसना रंग चरूले। पै पाए रंग चढ़ावणिया, हो वारी जी वारी निरपो मन मसावणिया। गुर कृपा ते हर पो निरपो ते आया, बिख पौजल शब्द तरावणिया। रहाओ मन मुख करे चितराई, नाता तोता थाए न पाई। जे आया ते जासी करे, अगुण पछो तावणिया। मन मुख अंधे किछन सूजे, मरण खाए नहीं बूझे। मन मुख कर्म करे नहीं पाए, बे नावे जन्म गवावणिया। सच करने शब्द है सार, पूरे गुर पाई मोख द्वार। अंदर बाणी शब्द सुनाए,

रंग सोई गुण गावे, गुर के शब्द सहजे सुख समावे। ओम बलिहारी सदा तिन बिट्टो, गुर सेवा चित लावण्या। सच्चा सचो सच बतीजे, गुर प्रसादी अंदर पीजे। वै स्थान हर गुण गावे, आपे कर सत मन आमण्या। जिसनों नजर करे सो पाए, गुर प्रसादी होमे जाए। नानक नाम वसे मन अंतर, दर सच्चे शोभा पावण्या। माज महला तीजा, सतगुर सेव गे वड्डी वडियाई। हर जी चिंत बसे मने आई, हर जी ओ सफल बिरकाए अमृत। जिन पीता तिस दिखा लहावण्या, हो वारी जी ओ वारी। सतसंगत मेल मिलावण्या, हर सतसंगत आपे मेले। गुर सबदी गुहार गुण।